ने पागल दिमागों में घनी खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल होने दे तो हम पागल ही अच्छे। देर इज ए प्लेजर इन बीइंग मैड।